practice here, मैंने सारे practice बंद थाने, थाने पश्ची English में से शब्द काम साला वासे थाने मेरे, थाने पश्ची मैं पिस्ता के शब्द बंद कर इंडिया को ही जाना, इश्कोर मैंने लगाए जन, लेकिन मेरा बाल ने लगाए जन, ये मैं से नेपाली English में काम चला मेरे जन, मैं तो इश्कोर में लगाऊं टाइम तो मुझे उस पर

0: था, अब हमने महीना फसल भर के उत्पादन कर देगा, इस कृषि में अत्यधिक गर्मी देगा था क्योंकि उत्पादन में कमी हमने उच्च जोखिम उठाई और साफ प्रशासन के उच्च तापक्रम के कारण उत्पादन करके आमदानी और समय खुदा में सोच रही।
1: त्यसैले हजुरको यही जोखिमलाई सम्बोधन गर्दै प्लान चेन्जको सहकारीमा सनीको इन्सुले

0: ही बात करता है।
1: वो अपना 3 लाख रूपया ऋण ले रहा थी, 3 लाख रूपया इकट्ठा कैसे मिला प्रतिशत ब्याज की रखना तो अपना खराज होगा। वह उससे अपना सारा और प्याज सहिता 3 लाख रूपया ऐसी ध्यान की रखना भी

0: 错。
1: 兄弟，你还在等什么？
0: 俺们这不是嘛？你说他俩年纪大，你把他告诉他，他耽误了我耽误他家的，把你把身上的病给搞。所以在这个哪呢？毛什么怕不看我？现在还把你家里头他俩之前那个大人都不拿。
2: आणि तपशिलाने पाला भेरी पातापडे विशिष्टता समाधी ग्रुप मानिक उत्पादनारी या संचालन भेरेको विपद प्रबतयारी उत्पादन तथा सबलीकरण परियोजना द्वारा चिन्हित कराई जा रही संदेश
1: बड़ा

पांचवी फोटो जैसे संसारी की गहना पटना में गया है उत्तर प्रदेश में नंबर वन संसारी गहना तैयार करेगा तो अड़क अनुसार गहना की बनी खाई

0: परिधियां सुखा के सम्भवित के प्रथम फिर मैंने परिचय कर हर खेती कर मैं किसे तो सुखा मसीब बताइए वो सबका निशान के रखता है वो खरी को खुद अपने कर वही बता रहा
1: है और अगर हमने कार्यक्रम ऐसे जीवों का सहयोग में संचालित

0: युवतिया वास्तविक स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारा एक बद्धता का थी वैदिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वस्वत रूप में कृति है यहाँ कानपुर में स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक तरलता खाने से कौशल्य अस्पताल बांसगढ़ी में संपर्क करना आर्थिक अनुरोध करा दी
1: अस्पताल से देसी इलाज सेवा
0: 24 घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ चिकित्सक डॉक्टर से प्यार छाती कॉलेजो नशा मुटु चेक जांच करते था
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हाथ जोड़ने तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक का घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे पीडीओ एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध बा सुविधा सम्पन्न लैब का सेवा उपलब्ध बा पैरालाइसिस को मुंह बांगुला नशा दाग गैलक हाथ द्वारा निचलना पेरामियम को नकला फिजियोथेरापी तथा एकुपेजर थेरापी पीडी मशीन उपचार कैसे था
0: नशा दब इलेक्ट बिराम यंत्र के बिना ऑपरेशन फिजियोथेरापी तथा एकुपंचर थेरापी से सफल उपचार कर जाए
1: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था कही था असहाय नागरिक एप्पल महिला अनाथ बाल बालिका अपंग ज्येष्ठ नागरिक मुकान पूर्ण सेवा में 10% छूट के व्यवस्था कही था कौशल्य अस्पताल प्रणाली बांसगढ़ी शाखा 5 बांसगढ़ी बर्दिया तुरंत पेट्रोल पंप दक्षिण बाजार
0: संपर्क फोन नंबर 084400192 और 084400210 बांसगढ़ी बर्दिया संसदीय कोर्ट 11 14 रुपए

0: चिंता था परिकर परियोजन द्वारा जनहित के लाभकारी संदेश।
1: नमस्कार, मेरा नाम योजना चौधरी वास्तविक नगर पालिका वार्ड नंबर 4 पटना उपयोग किया और प्रॉपर्टी ड्राइव के उद्योग मंत्रालय से स्नातक छोटे किसी गाँव से मैं दोस्त हूँ। हमने वो प्रॉपर्टी ड्राइव के उद्योग वाला
2: रेडियो गुरुबाबा एफएम को सहकारी में स्वास्थ्य

लिटर आज बिहार गुरुबाबा मौसम बुलेटिन गुरुबाबा मौसम बुलेटिन देखने जो बाजे तब समय शंकर और मई बिंदु को विदा।

0: किसानचो खेला थे सिद्धांत में भाई चेतरे मोबाइल नंबर 98662-13-616 और 98296-84294
1: नोट हमारे 5 लाइन गुंडू ट्रेलर्स पर एक शाखा सिद्धांत बैंक बास्केटिकल टोला नकली 5 लाइन गुंडू ट्रेलर्स मशीन खुश है रवि।

0: कौशल्य अस्पताल प्रणाली बाँसगरी पाँच बाँसगरी भोटिया गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा में प्रतिबद्धता नागरिक स्वास्थ्य प्रति हमारे की बद्धता घाटी मेरमेरिक स्वास्थ्य सेवा में सर्वसुलभ रूप में डीटीआई यहाँ कुनो स्वास्थ्य सेवा में आवश्यक पड़ल बाकाले कौशल्य अस्पताल बाँसगरी में संपर्क करना हार्दिक अनुरोध कराती
1: अस्पताल ऐसी
0: चौबीस घंटा डॉक्टर के प्रत्यक्ष निगरानी में उपचार करा जाए
1: प्रत्येक दिन बिहार 8 बजे से संध्या 6 बजे विशेषज्ञ फिजिशियन डॉक्टर से प्यार छाती कलेजो नशा मुटु चेक जांच
0: प्रत्येक दिन नशा तथा न्यूरो सर्जरी हार्ट जोड़नी तथा जनरल सर्जरी प्रसूति सेवा नाक कान घाटी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर द्वारा चेक जांच करा जाए
1: 24 घंटा डिजिटल एक्सरे वीडियो एक्सरे ईसीजी तथा इको मुटु एक्सरे सेवा उपलब्ध भा सुविधा सम्पन्न ल्याब को सेवा उपलब्ध भा त्यहाँलाई शिशु को मुख भाग बिना नशा धाकुलक हाथ द्वारा अन्य चलना बिरमे मुखनकला फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी विधि बसे उपचार कैसी था
0: नशा धाकुलक बिरमे मुखन के बिना अपेशन फिजियोथेरापी तथा एकुपेन्द्र थेरापी से सफल उपचार कर जाए
1: 24 घंटा एम्बुलेंस का व्यवस्था करेगी भा असहाय नागरिक एकल महिला अनाथ बालिका अपांग ज्येष्ठ नागरिक हुकन सेवा में 10% छूट के व्यवस्था करेगी भा कौशल्य अस्पताल प्रणाली बाँसगरी शाखा 5 बाँसगरी बर्दिया पुरान पेट्रोल पंप दक्षिण बाजार
0: संपर्क फोन नंबर 084400192 ओ 084400210 बाँसगरी बर्दिया संसदीय कोर्ट पर 11 चौथा नंबर

0: पांचवें कुटुंबले सुपर दर्शित सकाव बादली पदर किसान कुन के लग गए सिद्धार्थ बन के तारे अलवा आप सब कुन के लग गए पड़ी वो यहाँ तो नेपाल के भाव अनुसार सोनता जी के घर अपन पाई हो
1: ठीक बात है दीदी आप हमले इधर होने ना आप सोचे हमले पांचवें कुटुंबले सुपर दर्शित सकाव आप

0: सुदर्शन सापन का व्यावसायिक अधिकार नहीं रहा उनके यदि सफल गिरफ्तार होकर उनको लगभग उपचार केंद्र में जा रहे
1: विश्वास लगना और सही जानकारी प्रक्रिया को लगभग उपचार केंद्र खंडपा आधिकारिक स्नेक नेपाल डट ओआरजी में जाकर आवश्यक जानकारी लिख सकते नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय एपिडेमियोलोजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल WWF नेपाल का साथ ही द्वितीय पूर्वाला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वदंश अनुसंधान केन्द्र संगठन सहकार्यमा रोटरी इंटरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रहरूका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश
2: मै त बिहान नै खेल्न लागेन है
3: कार्यु
2: चलाएको थाहा बिसाएको काम हो लान्छ थाहा त हो मै त पानी भोलिक जीवन भइरहेको छ
3: त्यो बिस्तारी ठकै त मै त मैले पानी जीवन जल मिलाएर रोक्नु पानी भोलि सबै
2: बिहान
3: काम दिनका आराम
4: गर्मी मौसममा यो चिटिङ्गा घाम से बच्चालाई छाता नति प्रकाश सोपनी से ध्यान पानी पिए शरीर जुगु भएर त्याग मौसमी फलफुल खाई घर स्कुल के छानी जुलावार बनिएन
5: प्लान इन्टरनेसनल नेपालको भेरी वातावरणीय विशेषता समूह बी ग्रुपकी साझेदारीमा बर्दिया जिल्लामा सञ्चालन हुइरहेको विपद पूर्व तयारी उत्थानशीलता तथा सबलीकरण परियोजनाद्वारा जनहितकै लागि जारी सन्देश
6: काम ल्याऊ कि जार ल्याऊ खेतीबाली त समस्या आइरहेछ
7: कहाँ जाऊ कहाँ करू फिर दुख पैना होगी लब
6: बरगरा मांगने में कुछ रूपए मिले की जाए जाऊ
1: मौसम हवा पानी अपने खेती बाड़ी में समस्या पड़ रहा करके बरगरा मांगना सुनी

अपना चाहना थे। उसके बाद विराट नेपाल मेडिकल ट्रस्ट का जिला परियोजना

0: 上次的那些你给的打折。
1: 你的手里बालिका का खसरा काम बालिका निर्धारित समय के अंदर निर्माण कार्य संपन्न अधिग्रहण प्राप्त कार्य चुनाव का ठेक कर तकरबा काम बालिका का अनुसार वार्ड नंबर 4 स्थित एफ गांव में करीब 500 मीटर सड़क का उपथे करना कार्यकला 2077 फागुन 12 गते अमन कंटक संशोधन का समझौता कई किलारा संशोधन अनुसार कंपनी 2078 श्रेष्ठ 30 गते फिट निर्माण सम्पन्न प्रक्रिया आरम्भ सके हाल सम्म काम पूरा विषय करो दुई चरण में चिट्टा चिट्टा ठेक्का आह्वान का जिला योजना अंतर्गत ग्राम सरकार का गिट्टी विषय लगता निगम द्वारा सके कालो पत्र खतरा है वार्ता लापते सड़क पुनः चेन अवस्था में उपलब्ध स्थान उपलब्ध के बाद उसे का अमन कंस्ट्रक्शन अच्छे मामले एलआईसी बैंक से मनोकामना मंदिर सिंह अश्वत तथा नारी निर्माण गोपाल सिंह आलमगर और सिद्धार्थ बहादुर रामचारी का घर समर्थ वरिष्ठ उन्नति तथा गांव का 90 नंबर से 105 नंबर संत सड़क स्तर सहित का पूरा योजना है।

0: एक्शन किया जाता है, यानी तीन हिस्सों में काम किया जाता है। तीन हिस्से निकाला जाता है, एक को अपने घर पे रखा जाता है एक हिस्सा, और दूसरा हिस्सा दोस्त खाता में भिजवा दिया जाता है, ये अपने करीबी रिश्तेदार है। और तीसरा हिस्सा जो कि बहुत ऐसे लोग होते हैं जो साल साल को हो जाता है दोस्त नहीं खाते, यानी कि गरीब लोग हैं, उनमें जो कि वो तीसरा हिस्सा गरीबों में बांट दिया जाता है। आज के दिन जो कि जितने मुसलमान भाई हैं इकट्ठा होते हैं, नमाज पढ़ते हैं और एक दूसरे के गले मिलते हैं, मुसाफा करते हैं। इस गले मिलने का मतलब क्या है कि अगर छोटी मोटी रंजिश होकर भी तो आज गले लग करके हम सब उसको दूर करते हैं और सब हम लोग आपस में भाई भाई हो जाए। ये जो है कि तरीका है, इस तरीके से जो है कि आज के दिन हम लोग ईदगाह में इकट्ठा होते हैं और एक दूसरे से नमाज पढ़ते हैं, फिर एक दूसरे से गले मिलते हैं, मुसाफा करते हैं। इससे हम रात में एक पाई बनती है और हर मुसलमान भाई जो है कि एक दूसरे से गले मिलता है। ये हमारे इस्लाम में सबसे खूबसूरत चीज है कि दूसरे को जो है कि बुरा ना कहो आज के दिन में या किसी भी दिन में बुरा ना कहें। ये हमारा इस्लाम नहीं सिखाता है कि एक दूसरे को बुरा कहें। हाँ, जहाँ दिन की जिंदगी है हम खेल करके उसको गुजारें।
1: मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री जीत नारायण आचार्य पकड़ ईद उल अजहा पर्व समाज में प्रेम सद्भाव सहिष्णुता और भाईचार का भावना तत्पर था विश्वास व्यक्त करीद का अवसर में आज बताना संदेश जारी करते मुख्यमंत्री आचार्य नेपाल विविध भाषा धर्म संस्कृति व परम्परा ने समृद्ध हमारे पर्व उल्लेख करवाक समुदाय मनाई चाड़ पर्व सामाजिक सद्भाव आपसी विश्वास तथा राष्ट्रीय एकता सुदृढ़ बनने की मैदान मुख्यमंत्री आचार्य रूपी प्रदेश सरकार धर्म संस्कृति परम्परा सम्मान सम्मान प्रति मौलिक भाषा कला तथा संस्कृति का संपदा का संरक्षण और प्रबर्धन प्राथमिकता निकल धाम प्रतिरोध उल्लेख करवाग परिधान मानव सेवा व परोपकार का संदेश देना पकड़ ईद पर्व समाज होना आगे सहिष्णु सभ्य और एकताबद्ध परिणाम प्रेरणा देना विश्वास व्यक्त करवाद विविधता का सम्मान और सांस्कृतिक अस्तित्व से जनक समृद्ध समाज निर्माण संकल्प धारणा महान व्यक्त करवाद मुख्यमंत्री आचार्य मौलिक संस्कृति भाषिक पहचान और धार्मिक परम्परा का जरिए नाम से समृद्ध लुम्बिनी प्रदेश निर्माण सबको समुदाय का सदैव सहभागिता आपसी दलबाट शुभकामना संदेश मसिना मकर ईद का पावन अवसर में सबको नेपाली सबको नेपाली में सुख शांति समृद्धि सुस्वास्थ्य हो आपसी एकता का भावना अभिवृद्धि कसना कामना व्यक्त करवाट आप राष्ट्रीय समाचार को प्राप्त
2: निर्वाचन आयोगद्वारा निर्वाचन स्थल अपाङ्ग मञ्च बनाई सरकार बनाउन सुझाव दिनुभएको आयोजना कला प्रतिनिधि सभाले

0: तीन लाख ऋण ले रहा हूँ, तीन लाख से ढेर तीर से हूँ, अब मन तीन पढ़ना पड़ी बात कथा।
1: अपना तीन लाख रूपया ऋण ले रहा थी, तीन लाख रूपया चिंता कैसे लगा दी, ऋण लेने पर पेट पर संध्यास की रफ्त करा था अपना था जरा, और उससे अपना सालों अभ्यास तीन लाख रूपया से ढेर तीन पढ़ना।

0: मछली सुधर तट कराउन लगन तो कड़ेना उन्हर सी कविना हो पढ़ाई में ध्यान नहीं देना सुन चले लगन
1: रक्तार को तम से बचकला काई साग पात दाल गुड़ी गेरा आरा मछली शिकार ओ फल फूल आयरन युक्त खाना नियमित रूप में खाई
0: जंक फूड कम करी संतुलित खाना खाना रुचि स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थ भविष्य का आधार हो रेडियो गुरुबाबा एफएम का सहकार्यम स्वास्थ्य कार्यालय बर्दिया से जनहित मंत्रालय सदस्य खाना छ महिना पाठ अनिवार्य सुरु गरी अन्न केलाभरि साग सब्जी फल फूल सहित खानाले बच्चाखाना तन्दुरुस्त बनाए पूरक खाना सँगसँगै दुई वर्षसम्म स्थिर पारिरहेका छन्।
2: रेडियो गुरुबाबा एफएम का सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यालय बर्दिया से जनहित मंत्रालय सदस्य।

छात्रा स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मंत्रालय इपिडेमियोलॉजी तथा रोग नियंत्रण महाशाखा राष्ट्रीय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपालका साथै नीति मूल्यमा स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्वदेश अनुसन्धान केन्द्र संगठन सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेशनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रका साथ साथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा जनहितका लागि प्रस्तुत सन्देश

0: बनने जा रही है। ये कुमार ये जिनकी बजाय आने मदद पड़ा और परमाणु सभी जानकारी का और लगभग उपचार के अंदर कहां बात है का पता लगेगा। आधिकारिक
1: नेपाल सरकार स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालय इपिडेमियोलोजी तथा रोग नियन्त्रण महाशाखा र राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिक्षा सूचना तथा संचार केन्द्र विश्व स्वास्थ्य संगठन नेपाल डब्ल्यूडब्ल्यूएफ नेपालका साथै नीति कोरियाना स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बद्ध सर्पदंश अनुसन्धान केन्द्र संगठन सहकार्यमा रोटरी इन्टरनेसनल एवं रोटरी क्लब अफ काठमाडौँ मित्रहरूका साथसाथै विश्वभरका रोटरी फ्रेन्ड्स एवं पार्टनर क्लबहरूद्वारा चयनका लागि प्रस्तुत सन्देश।

चालीस हजार रुपया बराबर को नौ अवधि में सात करोड़ पांच लाख चौरासी हजार रुपया बराबर को आठ लाख अठासी हजार बारह किलो चिवरा निर्यात

0: युक्त खाना नियमित रूपमा खाए। जङ्क फुड कम गरी सन्तुलितहरू खान रोजे। स्वस्थ किशोरी जो स्वस्थमाथि शेखर हात हो। रेडियो पूर्वाधार संघको सहकार्यमा स्वास्थ्य कार्यले प्रत्याशी जनैक मन्त्री सन्देश।
1: स्वास्थ्य कार्ड हुँदैन है। मोटरसाइकल